0: जागो, मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मिलेनी ड्राइव, यूनिट 9 एंड 10, ब्रैम्पटन। टेलीफोन 905-799-9400।
1: हेलो हेलो गल सुन। ओ आहा, इन्ने सारे कार्ड किदे इकट्ठे करी जाना होए?
2: ओ यार, इंश्योरेंस वाले दे कार्ड ने।
1: ओ इन्ना खज्जल होण दी लोड़ नहीं, सारे कार्ड छड़ ते आ फड़। गुरजीत सुरी नु कॉल कर ला, चाहे लाइफ इंश्योरेंस होवे, डिसेबिलिटी या क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, विजिटर या सुपर वीजा इंश्योरेंस होवे, TFSA, RESP दे स्पेशलिस्ट गुरजीत सुरी। कॉल गुरजीत सुरी 416-627-3111, 416-627-3111।
3: खुशियां दे
4: सुन रहे हो रेडियो प्रोग्राम जिंदगी दे रंग, अपनी होस्ट गुरजीत कौर सूरी दे नाल। अपने बिजनेस नु प्रमोट करने लई कॉल करो 416-627-3111, 416-627-3111।
5: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੰਗ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨਿੱਘੀ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ

0: अज मेरे बेटे की पहली बर्थडे पार्टी है, दिल खोल के खर्चा किया है।
1: बहुत बढ़िया यार, पर एक गल दस, तू अपने बच्चे की RESP करवाई है?
0: नहीं तो
1: भाई, RESP तुहाडे बच्चे की सुरक्षित भविष्य की चाबी है। अज ही ऑल काइंड इंश्योरेंस तो गुरजीत सूरी नू कॉल करके RESP करवा। इना कोल क्रिटिकल डिसेबिलिटी ते स्टूडेंट इंश्योरेंस दे बेस्ट प्लान।

हेलो नमस्ते सलाम आदाब ते सत श्री अकाल की हाल चाल है मेरे फ्रेंड्स डोगरी रेडियो सुनने सारे का मता मता स्वागत है। मैं तुहाडी आरजे डोगरी की धी आखदे मिकी मेरा नाम है नेहा शर्मा। तो जो गल डोगरी की चलती है तो मैं सोचा डोगरी की गई गल करने तो डोगरी भाषा के बारे चुके मैं तुसें अच कुछ दसना है कुथों आई है भाषा कुथों निकली है भाषा तो कुथे कुथे अजे बोली जाती है तो इतने बोलने वाले लोग कुथे कुथे पुजे दे। डोगरी जी भाषा है बड़ी ही मिठी आखते हैं खंडू वागर मिठी है भाषा है तो खंडू के वागर मिठी इतने के लोग होंगे। ये जी भाषा है ये इंडो आर्यन ग्रुप की भाषा है। 22 दिसंबर 2003 से ऑफिशियल रिकग्निशन हुई ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल च इनकलूड हुई ही ऑफिशियली। तो ये जी ओरिजिनल लिपि है वह टाकरी लिपि पर जिया के अज डोगरी गुआची दी है उआ गे ये टाकरी लिपि भी गुआची दी है। तो सुनो आज के एपिसोड का अगला गीत तो फिर मैं तुसें सुनानी अगली गल।

मता मता स्वागत है तुंदा डोगरी रेडियो च। मैं हाँ अज दी आज तुंदी डोगरी रेडियो दी नेहा। ते मैं जियां तुसीं दस्या कि टाकरी लिपि दा निकली दी है, पर बड़े सारे लोग न जिन्हें कि टाकरी दा ज्ञान गै नहीं रहा है, विलुप्त होई है, जियां कि साड़ी भाषा विलुप्त होआ करदी है। ते अजकल सधारण तौर पर इसी देवनागरी लिपि च लिखिया जांदा है। ते ये जिहड़ी है इहदा सॉलिड बेस है इस भाषा दा, वो संस्कृत बेस्ड है। आई भी कई वर्ड हैं जो सिमिलर हैं संस्कृत दे ते डोगरी दे, या ते मीनिंग सेम होई जांदा हुंदा या फिर वो फोनेटिक थोड़ा जिहा चेंज होई जांदे ने। जियां कि संस्कृत दा वर्ड तुस लाओ यात्रा, जो कि डोगरी च आखा जांदा है यात्रा। अगर संस्कृत दा वर्ड तुस चुको हसा, ते ये डोगरी च होई जांदा है आसा। ते डोगरी भाषा सिर्फ डुग्गर प्रदेश च ही नहीं बोली जांदी है, ये पंजाब के कुछ इलाके च भी बोली जांदी है, जियां कि पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, उआं गे ही हिमाचल प्रदेश च भी बोली जांदी है। डोगरी भाषा ते हिमाचली भाषा बहुत ही सिमिलर है, पर हिमाचल दे आए भी कई जगह न जिहदे च प्योर डोगरी बोली जांदी है। ते डोगरी भाषा एक इकली भाषा नहीं है जिहड़ी जम्मू प्रदेश च बोली जांदी है, इहदे कन्ने होर भी बड़ी पहाड़ी भाषा न जो बोली जांदियां न। तो सुनो अगला गीत, ते फिर मैं सुनानी हां तुसें बाकी भाषाएं दे बारे च।

वेलकम बैक फ्रेंड्स, आज गल करा दे डोगरी भाषा दिया। ते जियां कि संस्कृत बेस होंदा है बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस दा, उआं गे डोगरी भी बेस है बहुत सारी और पहाड़ी भाषाएं दा। डुग्गर प्रदेश च होर भी बड़ी सारी पहाड़ी भाषा बोली जांदियां ने डोगरी दे अलावा, जियां कि कांगड़ी, सिरमुरी, रामबनी, भद्रवाही, गोजरी, पोंगली, ये नहीं और बड़ी पहाड़ी भाषा जो इस प्रदेश च बोली जांदियां ने। ते मैं ये रिक्वेस्ट करनी है श्रोता गणे कि जो जो भी सुना दे ना, वो जेड़ी भी उन्दी अपनी मातृभाषा है, जो भी उन्दी जड़ा ने, अपने आने वाली पीढ़ी की उन्दे कोला अवगत कराना बहुत जरूरी है, ताकि जियां तुस नहीं भुले, अब तुंदी पीढ़ी भी अपनी जड़ें गी नहीं भुले, ते उन्हें अपनी मातृभाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ते उम्मीद है इजाजत, मैं फिर परती आगे जंदे आस्ते एक नवी कहानी लईए, एक नवा ज्ञान लईए मेरे डुग्गर प्रदेश का।

0: टीका टिप्पणी होवेगी, चलंत मुद्दिया ते मसलिया ते
1: तिरछी नजर रवेगी, कनेडा ते दुनिया दी सियासत ते
0: छह पर लगेगी नवे पुराने गीता दी
1: बाता होनगिया सभ्याचार ते अमीर विरसे दिया
0: सुनना जरूर लाइव शो विद शमी पठल 5:30 AM ते सोमवार तो शुक्रवार
1: बिजनेस दी प्रमोशन ली आज ही कॉल करो 416-917-7073 416-917-7763

0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 6 7 2 2 3 6 7 2 2 3
1: मम्मी पापा दे वीजे ली सुपर वीजा इंश्योरेंस लेनी है ते पांटी बबली दा विजिटर वीजा भी लगवाना है। मेरा ते खर्चा ही बड़ा हो जाना है।
2: शमी पठल होरा ने तोड़ा खर्चा छोटिया इंस्टॉलमेंटा च बदल देना है।
3: वधिया बेनिफिट वाली इंश्योरेंस पॉलिसी वाजिब कीमत ते लेके दिंदे ने शमी पठल।
4: सुपर वीजा ते विजिटर इंश्योरेंस दियां बेस्ट डील ले। याद रखो इंश्योरेंस एडवाइजर शमी पठल जी दा नाम
5: 4169177763 416-917-7763 Life Insurance, Visitor Insurance, Super Visa Insurance, Critical Illness, Disability Insurance, RESP, Travel Insurance, Convert Expensive Mortgage Insurance to Term Insurance.

0: हीट वेव आ गई।
1: की गल इतनी जल्दी?
0: हाँ जी, ते पता है इसका की मतलब?
1: सनस्क्रीन, हाइड्रेशन, एनका ते सेविंग्स भी।
0: क्योंकि होलसेल क्लब हीट वेव आ गया है, होने लबो 3.78 लीटर फ्रैंक्स रेड हॉट सॉस सिर्फ $14.99।
1: ओहो,
0: उत्ते तो कीमत 15 जुलाई तक लॉक ने।
1: ओ भाई, इतना गर्मा गर्म डील है।
0: कोई मेंबरशिप फी नहीं। और जानकारी लाई स्टोर विच वेखो जा होलसेल क्लब.ca ते जाओ।
2: होलसेल क्लब, होल लॉट ऑफ वैल्यू।

0: Mulholland Drive, Brampton. Major intersection, Steeles and Kennedy, 90545-12600.
1: सीजन आ चुके है पुराने अकाउंटेंट नाल खुश नहीं हो या टैक्स दे विच थोड़ियां बचत किथे हुई हैं केड़े-केड़े लिमिट्स तोड़ ले सरकार ने सेट किते हैं लोन मिल सकदे ने या किते भी थोड़ी कंपनी दी शेप किस तरह होनी चाहिदी है पंजाब टैक्स सॉल्यूशन दे जगजीत साजा जी मिसिसागा ते कैम्ब्रिज दीयां दो लोकेशंस तो नवीं फाइल्स जिथे लै रहे ने उथे तुहानूं सुचेत करदे हन आने वाले समय लई टैक्स दीयां सर्विसिज लई पंजाब टैक्स सॉल्यूशन 416-720-3642 416-720-3642 पंजाब टैक्स सॉल्यूशन
2: कि तुसी भी इन्वेस्टमेंट दे इस दौर च प्रॉपर्टी च इन्वेस्ट करना चाहते हो कि तुसी भी प्रॉफिटेबल आउटकम ले प्रॉपर्टी लब रहे हो फिर फेयर डी रियल्टी रिप्रेजेंट्स आउटस्टैंडिंग फार्म हाउस 28 एकड़ लैंड विद टू रोड फ्रंटेजेस डबल कार गैराज ग्रीन हाउस एंड वर्कशॉप यही नहीं 407-418 हाईवे तो सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी ते फॉर बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स कॉल द बेस्ट टीम फेयर डी रियल्टी ब्रोकर ऑफ रैकेट हरदीप पंदेर एंड 905-671-2000
3: My favorite, मेरी पहली पसंद.
4: I love it.
5: मैं तो सवेरे सुने बिना रह ही नहीं सकती.
3: हम सबकी पसंद.
6: Radio Awaaz.
3: Every morning from Monday to Friday, 9 to 10 and Saturday, 10 to 1 on AM 530. Non-stop calls, non-stop talks. Promote your business with us. Contact 416-518-3200.
7: ओ यार बिजनेस का माड़ा हाल होया पे कितनी तरकीबा लगा चुका पर फिर भी कोई गल नहीं बन रही
8: निर्बल बाबे ने क्या से कृपा हो जाओगी नींबू मिर्चा टंगो पर कृपा तो हो ही नहीं
9: ऑनलाइन भी मार्केटिंग करके देख ले पर कोई रिजल्ट ही नहीं आया
10: एदा मतलब तुसी रेडियो आवाज ट्राई नहीं कीता
11: रेडियो आवाज
12: रेडियो आवाज रोजाना सवेरे 9 to 10 बजे तक एवरी सैटरडे 10 to 1 बजे तक प्राइम टाइम ते वधेरे जानकारी लई तुसी कॉल कर सकदे हो 416-518-3200
1: ਘਰ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਂਟਰਸ ਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਲਟੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣੋਗੇ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਸ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਕਸਟਮ ਕਾਰਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੇਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਫ੍ਰੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਈ ਸੁਖਮਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 416-816-8401 416-816-8401
13: रुपिंदर गरेवाल लॉ ऑफिस रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन विल बनाउन लई फैमिली लॉ जा फिर पावर ऑफ अटॉर्नी ऑल सर्विसेज अंडर वन रूफ कम्युनिटी दा जानिया पहचानिया नाम रुपिंदर गरेवाल बैरिस्टर सॉलिसिटर एंड नोटरी पब्लिक लोकेटेड एट चिंक्यूजी एंड बवेट फॉर ऑल सर्विसेज कॉल 905-497-1211 905-497-1211
14: दो व्याह कीते इंडिया च
15: ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਵਿਊਜ਼ ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
16: ਹੈਲੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮੈਂ ਤਵਾ ਕਿਚਨ ਤੋਂ ਕੈਟਰਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਸੱਚ ਮਨੋਂ ਸਵਾਦ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਗਰਮ ਗਰਮ ਫਰੈਸ਼ ਫੂਡ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੈਟਰਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ ਤਵਾ ਕਿਚਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੇਸਟ ਢਾਬੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਘਰ ਵਰਗੇ
1: 50 Sunnyvale Gate, Brampton, Mountnesh and Bovedda Intersection या विजिट करो www.tawakitchen.ca 905-790-1699 905-790-1699 tawakitchen.ca
17: याद है मेनू जदों मेरा फर्स्ट एक्सीडेंट होया सी किन्नी परेशान हो गई सी मैं इंश्योरेंस नाल डील करना गड्डी पेंट कराना किन्ने झंझट थैंक्स करदी हां मैं स्पीडएक्स ऑटो कलिजन वालियां दा जिन्ना ने मेरी इंश्योरेंस नाल खुद डील कीता रेंटल कार भी दित्ती ते मेरी कार नु बिल्कुल नवी वर्गी बना दित्ता ते तुसी भी पहुंचो स्पीडएक्स ऑटो कलिजन 181 रदरफोर्ड रोड साउथ यूनिट 11 ते या कॉल करो 416-277-9221 416-277-9221
18: You are listening to your favorite radio show, Radio Awaaz, The Voice, Zindabad, Zindabad. For advertising, please call 416-518-3200.

0: रात में छड़ दिनी आ पर जनाब चले किथे हो?
1: मैं चलिया स्काईडम ऑटो एंड बॉडी सेंटर जेडे करदे ने मेरी कार दी केयर बेस्ट सर्विस ते फुल रिपेयर
0: ए होई हन स्काईडम ग्रुप ऑफ कंपनीज जेना दिया जीटीए दे विच चार लोकेशना ने मेरी फ्रेंड अनु दी एक्सीडेंटल कार भी फिक्स करके नवी बनाती सी
1: जी हां कारा दे नाल नाल बसा अते वड्डे ट्रका दी हर तरह दी रिपेयर अते बॉडी वर्क दा काम भी कीता जांदा है रेट वास्ते बेस्ट पैकेज प्रोवाइड कीते जांदे ने वधेरे जानकारी लई कॉल करो 905-874-9878
2: मैं नवा कार लिया है तेनू पता है प्रॉपर्टी इतनी महंगी है नाले मैं एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ली है एक बाई मैं बेसमेंट भी बनाई है ब्रम्पटन वाले घर दी नाले मैं सोचदा वॉशर एंड ड्रायर भी चेंज कर ही दईए हुन समझ नहीं आ रहा अप्लायंसेस कित्थों लईए
3: हो जी इहदे च समझण वाली केड़ी गल है सारे कम वाले इक्को जगह चलो मिसेस अगर स्टील ते अप्लायंस जंक्शन ते इहदे प्राइस ते सर्विस नु कोई बीट नहीं कर सकदा तुसी 6 मंथ तक दी पेमेंट भी बनवा सकदे हो सारे ब्रांड्स दी ऑथराइज्ड डीलर्स भी ने मिसेस अगर The Appliance Junction. Call 905-450-0054. 905-450-0054.

0: और असाइनमेंट्स हैं, एग्जामिनेशन नहीं है, सोखे जी कोर्सेज ने मैनेजमेंट डे। एंड देन इसके बाद लाइक अगर आपने इन पर्सन कोर्स भी करना है वो भी है हमारे पास, सच एज एचवैक प्लम्बिंग, बट हमने देखा है उसमें उसमें बड़ा कम है रिटेंशन, उसमें मतलब 100 में से 2 बच्चे ही जाते हैं, और बाकी कोई एज की कोई लिमिट नहीं है जी इसमें, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, एज में कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं है। हमारे क्लाइंट्स हैं जिनकी एज 30 ईयर्स भी है, 50 भी, और 75 ईयर्स पे जो पेंशन है वो भी हमारे क्लाइंट है जी, कोई गवर्नमेंट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती एज के बेस पे।
1: ठीक है, और एलिजिबिलिटी क्या है इसकी?
0: हाँ जी, स्टेटस आपके पास होना चाहिए PR, सिटीजन प्रोटेक्टेड पर्सन का, एंड आपकी इनकम 2024 के नोटिस ऑफ असेसमेंट पे less than $70,000 है तो ही आपको इसका बेनिफिट है, और 30 से $100,000 की फंडिंग है, कोई एज लिमिट नहीं है इसके अंदर, कोई क्रेडिट चेक इसके अंदर नहीं करती गवर्नमेंट आपको, गवर्नमेंट आपको यहाँ पे एजुकेशन के लिए फंडिंग कर रही है, ना कि आपको बैंक फंडिंग कर रहा है, तो इसमें कोई कैच नहीं है। और लाइक आप हमें कॉल अभी भी कर सकते हैं, हमारे ऑफिस भी आ सकते हैं, तो लाइक दैट्स सेल्फ एम्प्लॉयड, अगर आप हैं ऊबर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, स्मॉल बिजनेस ओनर, आपको ज्यादा बेनिफिट और फंडिंग किसके अकाउंट में आती है? मेरे नहीं, आपके अकाउंट में।
1: ठीक है, और इस प्रोसेस दे विच कोई एज लिमिट ता नहीं हैगी है ना, ते बाकी फिर तुसी अपनी फीस दसो हुण।
0: हाँ जी, इसमें अपनी फीस से पहले एक छोटी सी ऐड करूंगा, अगर फैमिली ऑफ फोर है दोनों पढ़ देने, फुली ऑनलाइन कोर्सेज कर देने, इजी वाले सोखे जे वाले। अब इसके अंदर उनको तो आ रहे हैं $80,000, हस्बैंड वाइफ दोनों पढ़ रहे हैं, अगर इसमें से $40,000 क्या है, नॉन रिफंडेबल टैक्स फ्री ग्रांट्स, और जो रेस्ट $40,000 है वो है ऑप्शनल लोन, 0% पे है 1.5 साल तक, और जब 1.5 साल तक किससे स्टार्ट होंगी तब क्या होगा इसका इंटरेस्ट रेट 2.5% पूरे साल का, और आप वो 40,000 14 साल में रिपे कर सकते हो, रिपे कर सकते हो गवर्नमेंट को, इतने आसान शर्त पर आपको लोन मिलता है विदाउट क्रेडिट चेक, विदाउट कोलैटरल, विदाउट सिक्योरिटी।
1: कितने साल बोला, कितने साल में दे सकते हैं?
0: मैक्सिमम इज 14.5 ईयर्स।
1: अच्छा, 14-15 साल में आप रिपे कर सकते हैं।
0: मैंने अपना लोन 3 साल में पे करा था, कुछ लोग 10 साल में करते हैं, डिपेंड करता है, ओपन है वो, मतलब ग्रांट ही मिल गई नॉन रिफंडेबल, साथ में लोन भी मिल गया। अब इसमें आती है हमारी फीस की बात, आपको लगेगा हमारी फीस कुछ बहुत बड़ा कैच होगा, बहुत बड़ी फीस होगी, कोई परसेंटेज नहीं है, कोई कमीशन नहीं है, मीठी मीठी बातें करते नहीं, एयर पे फीस बताते हैं अपनी, ऑन एयर पे फीस है $199 से लेके $499 डिपेंडिंग ऑन कोर्स, एक कोर्स इजी है, कुछ कोर्सेज बड़े इजी है, कुछ कोर्स बहुत ही ज्यादा सोखे ने, बहुत इजी ने, तो इसलिए एक ही फीस, कुछ की फीस 199 है, कुछ की 499 है, कोई परसेंटेज कोई कमीशन नहीं है, और आपने हमारी फीस जो छोटी सी फीस है काम होने के बाद अपनी ईमानदारी से देनी है, क्योंकि फंडिंग किसके अकाउंट में आ रही है, आपके अकाउंट में आ रही है।
1: ठीक है,
0: लास्ट वीक 34 बंदों की फंडिंग गिरी है, 29 के पैसे मुझे खुद ही आ गए, मुझे मांगने नहीं पड़ते, हमें मांगने नहीं पड़ते हमारे स्टाफ को।
1: ठीक
0: है, तो बाकी 4-5 लगे वो मांग लेंगे, है ना, तो यही है, इसमें कुछ कैश नहीं आती गवर्नमेंट, जैसे बिलियन डॉलर्स डेंटल केयर में, फॉरन एड में, इधर उधर लगाती रहती है गवर्नमेंट, एजुकेशन भी स्पेंड कर देती है, तो कोई कैच नहीं है। कॉल करें 437-264-3175 437-264-3175 हमें कॉल करो, असेसमेंट कराओ क्विक, देन साडे ऑफिस भी आओ, 200 एक्सपर्ट बुलेवर्ड पे हमारा ऑफिस है मैसेज आगा पे, आप वॉक इन भी कर सकते हैं, नंबर है नंबर टू कॉल 437-264-3175। 1 अगस्त के बाद जो नया अकेडमी की स्टार्ट हो रहा है उसमें गवर्नमेंट ग्रांट्स मैसिव कट कर रही है, आज आपको ग्रांट एंड लोन दोनों आ रहा है, 1 अगस्त के बाद अगर आप एनरोल करेंगे आपको सिर्फ लोन लोन लोन आएगा, इसलिए ग्रांट लीजिए, कॉल करें 437-264-3175 437-264-3175।
1: जी थैंक यू सराज, थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल जी, तुसी जरूर कॉल करो, देखो किन्नी वधिया तुसी अपनी एजुकेशन ले सकदे हो, एजुकेशन दा तां वैसे भी आपां कहंदे हुंदे आ ना कि कोई थोड़ा खो नहीं सकता, जिहड़ी एजुकेशन है ना थोड़ी, तुसी विद्या प्राप्त करदे हो ते विद्या विचारी तां परोपकारी तां ही कहा जांदा, उहदा परोपकार करदी है जिहड़ी विद्या जदों आपां एजुकेशन लै लैंदे आ, सो इस करके जे गवर्नमेंट थोनू वधिया चांस दे रही है सो क्यों नहीं ग्रैब करना चाहिए जरूर, ते तुसी 437-264-3175 ते गलबात करो, ते वधिया जिहड़े कोर्सेज करो, ते अपने आप नूं अपग्रेड करो, वधिया ही है ना। सो लो जी जुड़े तुसी गुणतास रेडियो दे नाल, ते समां पता ही नहीं लगता किवें निकल जांदा, 10:50 हो चुके हैं, ते 10 मिनट अपने प्रोग्राम दे रह गए हैं, ते अपां ने अज वधिया गलबात कीती है, ते तुसी एक नंबर हुण होर नोट कर लो, फिर अगली गलबात आपां करदे हैं, ETN ट्रैवल्स नूं कॉन्टैक्ट करो 905-463-13

0: मेडिकल इंश्योरेंस नंबर है 416-817-6500। दिस इज हरप्रीत सैनी, चार्टर लाइफ अंडरराइटर एंड सर्टिफाइड हेल्थ इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट फ्रॉम टॉप चॉइस इंश्योरेंस एजेंसी।
1: You're listening to Punjabi Versa, Monday to Friday, 11 a.m. to 12 p.m. For more information, call 647-448-1000.

0: वाह भाई वाह, इंतजार आज भी है। कैसे गीत हैं, कैसे गीत बन गए हैं, इधर गीत कितने दोबारा बनने हैं, कमाल हो गई है। ढिल्लों साहब होर दसो की कहना चाहोगे?
1: मैं गल कहना चाहांगा कि भी कई बार ना चीजा प्रोफेसनल सलाह लैन दे नाल बहुत चीजा का फर्क पै जाता।
0: जी जी,
1: एक स्टेट प्लैनिंग करने की बहुत जरूरी होंगी है।
0: हाँ जी,
1: स्टेट प्लैनिंग करने की यह लोड़ पैंदी है क्योंकि आप कई बार ना अपा नहीं प्लैनिंग हो सकता गलत होवे, अपना तरीके गलत होंगे कई बार, पर जे तुसी स्टेट प्लानिंग दे डिस्कस कर लैंदे आ फिर पता लग जांदा कि तुसी किद्दां मिनीमाइज टैक्स नाल अपनी वध तों वध पैसे किद्दां क्रिएट कर सकदे।

0: जहाँ है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
1: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129. 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
0: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
2: You're listening to Punjabi Versa, Monday to Friday, 11 a.m. to 12 p.m.

0: 32 55 80
1: ते 98
0: एक ही गलत काउंटिंग सिखाई जान
1: काउंटिंग नहीं ए ते 32 55 80 ते 98 इंच दे टीवी ने
2: जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने इन्ना कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलेंगे हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते
1: 32 to 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने
0: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी कॉल 905 450 2828 905 450 2828

0: समोसा एंड स्वीट फैक्टरी जिथे पाजी दिया सारिया आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले फॉर जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी लिए कॉल करो 416-213-1165।
1: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
2: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
1: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
2: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
2: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-500-1509 ते।
3: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू,
2: 416-509-1509
3: और visit insuranceforyou.ca.
4: Kataria Tours and Travels, located near 2883 Derry Road, East Upper Airport and Derry, the intersection upper. To see cheap flight tickets, Nepal de vichon, Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar, the route options sono chahide ne. Jan to see visa services Nepal de vichon, puri family vacation upper jaan di soch rahe ne, jithe tuhanu all inclusive vacation packages bhi milde ne. Pahunchna wa ji Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection upper. Call kar sakde ho 905-678-1200. 905-678-1200 Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection of Perth.
5: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
6: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 905-460-8888, दैट्स 905-460-8888।
5: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
7: नोबेल फ्रेश फूड शहर विच इको रौला पै गया, टॉप क्वालिटी ते लो लो प्राइसा विच नोबेल फ्रेश फूड फेर नंबर ले गया। आटा दाल चावल दाली सब्जी ते दूध क्यो सब मिलेगा नोबेल फ्रेश फूड, 2945 सैंडलवुड पार्कवे ईस्ट, दूसरी लोकेशन 20 ग्लिंगहम ड्राइव इन ब्रैम्पटन। फोन 2898010566। नोबेल फ्रेश फूड।
8: वेमला विलेज ला विलेज पढ़दी पीओ च जंट पढ़दा, वेमला विलेज ला विलेज, वेमला विलेज ला विलेज पढ़दी। सत श्री अकाल जी, मैं हां तुहाडी अपनी शिप्रा गोयल ते तुसी सारे सुन रहे हो वतनों दूर रेडियो सुखी निज्जर जी दे नाल।

0: One-stop solution for all your mortgage needs. Bank declined. Mortgage for self-employed. Quick closing in 48 hours. Or commercial loan. Just don't worry. 647-512-7000. Mortgage broker Mukesh Chauhan from Mortgage Diligent. FSRA number 10252. Conditions apply.
1: Don't worry. Mukesh Chauhan hai.
2: यारों के साथ टशन या फैमिली के साथ करना हो जशन, ढाबा ऑन द फॉल्स आए, टेस्ट का वादा और चॉइस भी ज्यादा।
3: दिल्ली वाला बटर चिकन, रोगन जोश, सोया चाम, बेस्ट वेज नॉन वेज बिरयानी इन द टाउन, बेस्ट वेज नॉन वेज एपेटाइजर या माउथ वाटरिंग मेन कोर्स खाना हो तो सीधा चले आए ढाबा ऑन फॉल्स, द बेस्ट फूड इन नाइग्रा फॉल्स। LLBO एंड बियर ऑन टैप ऑल्सो अवेलेबल, वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम द फॉल्स, फ्री पार्किंग। विजिट 5039 सेंटर स्ट्रीट नाइग्रा फॉल्स, कॉल 9053580864
2: 9053580864 Dhaba on the Falls.

0: सेट चांदी की बैंगल्स और चांदी की पायल।
1: इतनी बस नहीं, जेंट्स ने चांदी के कड़े, चांदी की चेन, चांदी के ब्रेसलेट,
0: बर्तन और चांदी के किसी भी तरह का सामान लेने के लिए वन एंड ओनली सिल्वर हट।
1: फोर एंड अवनीजर द इंटरसेक्शन ते मुर्दबारे बाय प्लाजा दे विच सिल्वर हट।
0: 6473393521
1: 6473935 4525 अवनीजर रोड ब्रैम्पटन सिल्वर हट।
2: वे जिथे चलेंगा चलूंगी नाल तेरे, वे टिकटा दो ले ले।
3: लेनिया हो या चार बिजनेस ले जाना होवे या फिर घूमन ले, इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट हर तरह दे ट्रैवलिंग पर्पस ले कांटेक्ट करो। एयर टिकट्स, इंश्योरेंस, पासपोर्ट एंड वीजा सर्विस ओ भी रीजनेबल प्राइसेस ते। स्पेशल ट्रैवल पैकेजेस भी अवेलेबल ने। कटारिया टूर एंड ट्रैवल 2883 डेरी रोड ईस्ट मिसिसागा। कॉल 9056781200।
4: आप पंजाबी आ गए।

0: IPL चल रहा है ओनली ऑन करो स्ट्रीम. Watch successful IPL season only on Karo Stream. www.karostream.com or call 905-204-1313.
1: बस करो, कदों तो किस किराए दे छोटे जे घर चलावांगे.
2: ओए बस, मॉर्गेज अलायंस दे नरदेव सिद्धू नु कॉल करन तक.
3: तुसी सेल्फ एम्प्लॉयड हो, फर्स्ट मॉर्गेज, सेकंड मॉर्गेज, इक्विटी टेक आउट, प्राइवेट मॉर्गेज या फिर
4: सिक्योर लाइन ऑफ क्रेडिट, इक्विपमेंट लोन या रेंट टू ओन बारे सोच रहे हो, तब मॉर्गेज अलायंस दे नरदेव सिद्धू नु जरूर मिलो. नरदेव सिद्धू जे फड़न के तुहाडी बां, तब मॉर्गेज तो नहीं हो सकती ना.
3: या कॉल करो 647-294-5503.
4: भरोसे विश्वास वाला नाम नरदेव सिद्धू. लाइसेंस नंबर 10530. nardevsiddhu.com.
5: गल हवे रियल एस्टेट सेल परचेज ऑफ बिजनेसेस, कमर्शियल ट्रांजैक्शन, विल, पावर ऑफ अटॉर्नी या फिर एफिडेविट दी, ता सोचन दी लोड़ नहीं. इको नाम याद रखो, लॉ ऑफ अमन शर्मा, जो अपने क्लाइंट्स नु देंदे ने एक्सीलेंट लीगल सर्विसेज. अमन शर्मा LLB, बैरिस्टर, सॉलिसिटर एंड नॉटरी पब्लिक, 25 चेरीक्रेस्ट ड्राइव, यूनिट 6, ब्रैम्पटन. कॉल 905-913-2355, 905-913-2355.
6: ना किद्दा दी तैयारी?
7: ओ जी, मैं रसोई नू निगाह मारी, देखिया ग्रोसरी मुक गई सारी, ते फेर मैं बेस्ट एशियन ग्रोसर दी खिच लई तैयारी.
6: मेनू पता है, आज ग्रोसरी दे नाल नाल आओ बारो खान पीन दी वारी, क्योंकि इना कुल मिलदी है वैरायटी सारी.
7: जी हाँ, बेस्ट एशियन ग्रोसरी स्टोर, जिथे ग्रोसरी ते रेस्टोरेंट दोनों ने, जिथे तुहानू मिलेगा फिश, गोट करी, तंदूरी नान ते स्पेशल देसी स्टाइल पिज्जा. फन सर्विस भी प्रोवाइड कर देने. बेस्ट स्टेशन ग्रोसर, इको प्लाजा विच तिन्नो, ग्रोसरी, देसी स्टाइल पिज़्ज़ा एंड रेस्टोरेंट, कैम्ब्रिज. कॉल 519-621-7774.
8: मतलब शायद तुसी स्वीट महल नहीं गए.
9: नहीं, मैं मर जा, उत्थे की होने.
8: GTA दा सब तो स्वादला खाना उत्थे ही ता मिलता है. सही सुनिया भाई, जिन्ना सोना रेस्टोरेंट है उस तो भी ज्यादा स्वाद स्वीट महल दी हर एक डिश है. जलेबियां, पकौड़े, समोसे, टिक्कियां, व्याह होवे पार्टी या होण किट्टियां, स्वीट महल दी वेज या नॉन वेज आइटम्स ले डाइनिंग करो या केटरिंग करवाओ. इको नंबर कुमाओ 416-679.